0: தான் உனை சைமன். இப்ப நம்ம சொன்னோமே அந்த கோல் கீப்பர் ரெக்கார்ட் பண்ணினாருன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அவருக்கு தான் கோல்டன் கிளவ். வாழ்த்துக்கள்.
1: நன்றி நன்றி.
0: ஓகே, அடுத்த நேயர் வந்தாச்சு. வணக்கம்.
2: வணக்கம்.
0: வணக்கம். யார்
2: பத்மா பேசுறேப்பா?
0: எங்க இருந்து?
2: வேளச்சேரியில இருந்து பத்மா.
0: வேளச்சேரி பத்மா. ஓகே. 2030 காமன்வெல்த் போட்டிகள் எங்க நடக்க இருக்கு?
2: 2030 காமன்வெல்த்.
0: இப்போ வந்து ஸ்காட்லாந்துல நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? 2030. ஒரு நேர் கூட வந்து சொன்னாங்க ஆக்சுவலா இதோட ஆன்சர்.
3: நன்றி. काफी बिजी लग रहे हो.
4: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ. एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी. पेमेंट लिंक भी भेजा है.
3: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता. धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं.
4: सच?
3: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो. सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें.
4: समझ गया.

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।